0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्लस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
4: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
3: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
4: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
3: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी।
6: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
7: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5 दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार सत श्री अकाल गंगापुर सिटी दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं लेकर हाजिर रहूंगा मैं आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम जिसका आपको सदैव इंतजार रहता है हेलो फरमाइश दोस्तों हमारे स्टूडियो की कॉलिंग लाइन चालू है आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर कॉल करके आपकी फरमाइशों को रिकॉर्ड करवा सकते हैं फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के साथ आरंभ करने जा रहे हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर आपका।
2: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर, जिला विदिशा एमपी से।
1: हारून जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
2: जी। फिल्म का नाम है मुझे प्यार करते करते, कुमासान की आवाज में सुनवा देना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
4: बचपन
5: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
6: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
5: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
7: गंगापुर सिटी की धरती।

0: हेलो
1: हेलो मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: मैम सिमरन पटेल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सागर मध्य प्रदेश।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम शनिवार राती।
0: शनिवार राती,
1: मैंने नींद नहीं आती।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: sleep.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर का नया मैजिक रेडियो
2: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: यशवंत पटेल मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: करतपुर सागर मध्य प्रदेश मैम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये लड़की पागल है मैम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।
1: जी वेलकम।
2: तेरी मम्मी की जय।

टीना चिकन चमेले कट कट रीना सच बोला था शाहरुख खिश्क कमीना तूने ये तो किया बर्बाद तू एक नंबर बाकी तेरे बाद है टीचर के लेक्चर याद होना हो तुझे बादशाह के गाने सारे याद है।

0: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
4: मेरा नाम है गंगाधर सावंकर, कुंडलवाड़ी, नांदेड़, महाराष्ट्र।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते जल्दी दादा।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी,
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्ता शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैम सॉरी वो अटक गई थी, मेरा नाम नंदिनी पटेल है।
0: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हो?
1: भोपाल मध्य प्रदेश।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है मैं सोचू तुझे सोचू, यही काम करती है आए दिन मुझे रिश्ते हम याद करते हैं।
0: दोबारा बताना एक बार धीरे धीरे।
1: मैं सोचू तुझे किसी और को तू सोचे

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन
3: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
5: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
6: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
5: डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
6: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
5: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
7: बचपन पब्लिक सेकंड।
8: जी नमस्ते सर।
9: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
8: सर खंडे राम गुजर बोल रहा हूँ, गांव बदर क्या से।
9: तो कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
8: सारा जमाना हसीनों का दीवाना।
9: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
8: थैंक यू।
9: वेलकम सर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: डीएस साइंस एकेडमी क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म गंगापुर सिटी में शिक्षा अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान नियमित अध्ययन परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475 दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6378024475 दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
5: हाँ हेलो
6: हाँ जी नाम क्या है आपका
5: मेरा नाम प्रियांशी पटेल है
6: कहाँ से बात कर रहे हो
5: भोपाल मध्य प्रदेश
6: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
5: चुनरी चुनरी
6: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो सर, नमस्ते।
2: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
2: चौधरी निवेदन सर।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना बढ़िया है।
1: हाँ जी बताइए।
2: मैं देखूं जिस ओर सखेरी।
1: कौन सा सर?
2: मैं देखूं जिस ओर सखेरी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेलकम सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: DS साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
4: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
3: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
4: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
3: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
5: हेलो, हेलो मैम। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
6: जी मैम, मेरा नाम सुनीता है।
5: कहाँ से बात कर रहे हो?
6: गंगापुर सिटी से।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
6: हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह।
5: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियो DS में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: तो
5: अपना DS रेडियो गंगापुर राजस्थान जी।
4: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
5: बेटा जी मैं जी पिंड मावड़पुर जिला बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोलता बेटा जी। प्यार सत्कार भरी सत
4: श्री अकाल सर। सत श्री अकाल
5: बेटा जी। पालक बेटा बोलते जी तुसी?
4: क्या सर?
5: बेटा मेरे मान योग बड़े भाई प्रिंसिपल जी, वो मास्टर जी ने कुछ का नाम है सरवंत सिंह धालीवाल, प्रिंसिपल अमरजीत सिंह बाला साहब जी, जविंदर सिंह तगड़ साहब जी। अपने जी धर्मपाल स्वामी जी बेटा, परमजीत सिंह बाघा पुराना बेटा, उन्होंने एक फिल्म है बेटा परिवार फिल्म है फिल्म जी पुरानी फिल्म परिवार
4: परिवार।
5: हाँ जी, ते मिठुन चक्रवर्ती दी है बेटा ये फिल्म।
4: हाँ जी, गाने की बोल उसकी।
5: बेटा गाने की बोल तो मैं भूल गया, तुम कोई भी मर्जी इस फिल्म का कोई भी सुना दो।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। येगा ना रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: बेटा जी बड़े सर मेरे मीना जी कृषि मीना जी सत्य नहीं कर रहा।
4: हाँ जी सर, मैं जरूर बोल दूंगी उनसे।
5: ठीक है बेटा, सच्ची गल बात।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
4: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS।
1: रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
5: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
0: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में ना डालें। रेडियो DS एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी

मेरे साथ ट्यून इन कर रही है रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका? सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव, एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: हेलो
3: हेलो, हाँ मैम।
2: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
3: शैलेंद्र रोज।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: नसिया कॉलोनी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: डांडा का गाना। कौन सा? कोई सर चला दो।
2: ओके सर, सुना रही हूँ आपकी फरमाइश। परी गाना

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
2: हेलो,
3: हाँ जी मैम, क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
2: सिंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी? ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
5: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
6: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
5: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
2: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: मैम नहीं,
1: कौन
0: और नहीं, मैं गंगापुर सिटी से बोल रहा हूँ। मैं आपसे एक बात कर
1: सर, पूरा ही चलाया ये आपने, गाना चलाया ना, मैंने पूरा चलाया है।
0: अब मैम यही गाना आप दोबारा से बजाइए, मेरे नाम से बजाइए इसको।
1: ओके सर,
0: ठीक है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
3: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
4: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
3: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
4: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
3: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
5: हेलो
6: हेलो,
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
6: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
6: फिल्म मोहरा से कोई भी गीत सुनवा दीजिए।
5: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: धन्यवाद।
5: यू वेलकम सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नमस्कार, नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे हम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: वादा कर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: हेलो मैम, मैं उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी सर, नमस्ते।
3: जी मैम, मैं पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: जीने के बहाने लाखों है जीना तो तुझे आया ही नहीं, कोई भी तेरा हो। जी मैम।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: जी जी ओके।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन। हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए
3: DS साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
4: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
3: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
4: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
3: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
6: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
7: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
6: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
3: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
8: 89.6 पे
1: रेडियो DS।
9: हेलो,
10: नमस्कार मैडम। नमस्कार
9: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
10: रतनलाल बोल रहा हूँ मैं, उपला से।
9: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
10: ए रोम रोम पर बसने वाले राम जगत के स्वामी हो अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगूं।
9: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: 89.6 पे रेडियो DS
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
8: 89.6 पे
1: रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
4: हेलो जी, सुनने से पहले आज कजरी तीज है, मेरी तरफ से सभी प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: धन्यवाद सर।
4: और गीत सुनना है सनम बेवफा का, चूड़ी मजा ना देगी।
3: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो DS में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: थैंक यू।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: ये भवानी मामा जी, नाम क्या है आपका?
4: मामा,
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
4: पिया तुम हो सागर मत जाती नहीं।
3: ओके मामा जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा।
1: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें DS Science Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
4: हेलो,
5: नमस्ते दीदी।
4: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
5: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर सोनमर।
4: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: आज कुदरत फिल्म का तूने और रंगीला के साथ जादू किया।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो DS में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आपका भी धन्यवाद।
4: यू वेलकम सर।

0: रेडियस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: हेलो,
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: लक्ष्य सैनी।
5: कहाँ से बात कर रहे?
4: गंगापुर सिटी।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: कमर डीजे पे।
5: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर।
6: It's vampire.
7: Shangar ka lakdi.

89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। 89.6 DSFM पे,
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
4: हेलो
5: हेलो,
4: हाँ जी, नाम
5: Hello,
4: क्या है?
5: माधव पटेल।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
5: भोपाल से।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS। 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
6: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: का सरताज है।
1: Friends, my name is Aastha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
2: Bachpan Public Secondary School, Gangapur City.
3: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
3: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं, जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
5: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं।
6: बचपन हम पे मरने वाले थे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: असद।
2: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? अपुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: डोला चला।
2: ओके सर, सुना रहे हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: आ रहे हैं आपकी फरमाइश।
2: क्या बात कर रहा हूँ अंगव? हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: नाम रवि मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, गंगापुर सिटी से, मौकला से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: मासूम शर्मा का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: अनिल।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
3: कौन से गाना सुनना चाहोगे?
2: कब्जे।
3: हमारे आपकी फरमाइश करेगा ना?

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: विजय कुमार पटनागिया।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: हम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम क्या है आपका?
3: नमस्ते सर।
2: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: जी मेरा नाम कार्तिक है।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी राजीव कॉलोनी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: सिद्धू मूसे वाले का 295 सॉन्ग।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
3: जल्दी

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS
2: 89.6।
3: नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम देवो त्रिवेदी।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: किया किया।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: name is Astha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
1: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: हर बीच में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
3: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
6: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
7: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
6: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं, जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां, जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
1: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
8: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
9: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं DS साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। DS में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूं तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह DS के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। DS में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए DS में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में DS एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए IIT और NEET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए DS से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
10: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में न डालें। रेडियो DS एवं DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी।

0: के साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम को यही समापन कर आपको ले चलते हैं नए तराने कार्यक्रम की ओर।
2: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर,

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS89.6

0: आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
1: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
3: अब कैसे मायने पर हिरिला तो नहीं गण पाया आयोग?
4: नहीं अब बाबा जी।
3: अच्छा

0: वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: DS साइंस अकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS साइंस Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS साइंस Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

yeah.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ पे
2: ब्राउन रे बन लाके गली तेरी केड़ी मारे ऊपर चला के कटी फट।

0: रोटी कदों बनू?
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है, 2 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: DS Science Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS Science Academy, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रिव्यू

0: का सरताज है।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: chair at my table.
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएफ।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे मेरे साथ कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दोस्तों 4:04 का समय हो चुका है। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:18 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: DS साइंस Academy, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS साइंस Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस Academy, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: रेडियो डीएस
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम राजस्थानी। आप थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मन पसंद कार्यक्रम राजस्थानी। माफ कीजिए, हेलो फरमाइश।
2: हेलो
3: सर, नमस्ते।
2: नमस्ते, पलक जी चौधरी बोल रहे हैं, महावीर जी से।
3: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना रेडियो देश के लिए सुपर हिट लाए हैं।
3: हाँ जी बताइए।
2: गाना पूरा बजेगा दीदी, नाच मेरी बलोल।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो देश में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद,
3: वेलकम सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो
3: सर, नमस्ते।
2: परम आदरणीय पलक दीदी, शारदा सप्रेम, प्यार है, नमस्कार
3: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: जी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
3: धन्यवाद सर। सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
2: इश्क बिना भी क्या जीना यारो, इश्क बिना भी क्या मरना, फिल्म ताल से।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, नमस्कार।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
1: रेडियो DS।
3: गुड इवनिंग मैम।
4: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम अय्यर सलमानी।
4: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
3: चूली के रंगापुर सिटी से मैम।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: आज गाना सुनना चाहते हैं ओढ़नी ओढ़ली या तेरे नाम की।
4: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
3: ओके मैम, थैंक्स मैम।
4: यू वेलकम।

0: जी नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: चंदीराम गुजर बोल रहा हूँ, गांव गुजर क्या से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गांव में है मगर नजर आती नहीं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: विजेंद्र मीणा में।
2: कहाँ से बात? कहाँ से बात?
1: इलापाड़ा से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैम साजन मेरा उस पार है, मैं 4-5 दिन हो गए।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: हिमोटिया।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: सांवरिया धोड़ी कार दिला दे।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: 1000 मेरी बहना।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना। हेलो,

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? रूट सॉन्ग?
3: हाँ
2: वो किसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम काजल।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: आईसीसी डैडी राखे पतला से छोरा है।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी, फरमाइश करिए गाना।
4: ओ गाड़ी पर चला

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी।

0: का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
2: डीएस साइंस एकेडमी क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म गंगापुर सिटी में शिक्षा अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान नियमित अध्ययन परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर

आपका चिंटू आ गया। चिंटू बहुत बड़ा हुआ है, मैं तुझे कंधों पे कैसे बुलाऊं?